0: C'est Zoom Radio. Musique, hits, news.
1: Zoom.
2: पावर एजेंट से शुरू होना एजेंट से खत्म हुई पावर तो सर क्यों कहां से ले ली
3: सर वही जवाब बोल रहा है